समझता। हाँ जी, दूसरा बंद व समझता। लिहाजा दादी चिरे जनावर पवख वाखली दे देखभाल की अवदारी जान सारा दा जनावर मानूस की मानूस चिद सारा आदत भी हो चिकल पिदा चाड़ा राकागी नबिया पदी डीर ज्यात अजर दे चिद दम सड़ जाड़ी आओ जनावर हम खफई दगा दर्द दगा जुदाई दगा वक्त किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत दपारा चिदे जाहिरोल ची अल्लाह बस इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्ब जमा हो हर सस्ता दी खुदाया मानंदा जनावर स्ता पमीना के जबह को जमा द बची जरूरत भी नब पल बचे जबह को कस्ता द दीन की चिदे जमा त जरूरत शुदाया जब अखपल जान न दरेग न को जुमाई जतमंदो दा बाकेद गई सरा मुंग औतासु के जनानवी आओ कसड़ी भी ददी जनावर खिदमत को या जुमाई जतमंदो चा चाचे उस रावस्ती भी अगीद यो खबर इतना सोच साती बाजी कसान वागानी अखली मेखे अखली नो आग पई कवि पई शोधी ची वतासुआ नो कदा यो टाइम कवि ओ कध्व टाइम कवि दा कुर्बानी वाला कुर नशी इस्तेमालोले दा बाबा के दस सत की हर सोरज इदा दी ओला शोला दा बाबा के दा द गरीब हक ते अगबे सत कवि जुमात ता तालिब ता इलाके की गरीब यो स्टार रिश्तेदार रोर द सीधे ची भाई आगा कुर्बानी न दकड़ी ईद न दकड़ी या गरीब दे न दता आगा ची दे आगा शोदा आगा पई आगा दता लीगली शी बा के दे ची दे आगा इस्तेमालूली शी ती ची दे अहले खाना यानी सोक ची कुर्बानी कवि आगे कत अन्न शी इस्तेमालूली इज्जतमंदो मसाइल डेर दे इंशाल्लाह रस्ता व रजबा लग लगते बयानो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अमल कुल तौफीक नसीब की।

खुदा के नूर मेरी बहनों रखे दुनिया की रौनकें देखने से नासिर है जिसका शिकवा नहीं मगर एक तमन्ना है कि मैं आपके शहर में आकर गुंबद-ए-खज़रा देखूं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: द करक अनूर शो को अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बावसीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह आचार से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिमपी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखबर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

0: हाय छा मैसेज रो तकर है सब मैसेज कर है वही रात भई डुलू ना सब प्ले खायो डुलू ना लका जी बिल्कुल अच्छा छे मैसेज कर है देखना लका जी दोइना नु ओदे विशा सही है मैसेज रो तो है ओदे मई दा ओदे होने दा है ना ब्या बिल्कुल दिता डुलू ना प्ले कमर सा ओके गुरु बनेश कलर अस्सलाम वालेकुम
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट जी तो संगे है सो खबर को किम से ना
1: जीनत खबर रखना
0: अच्छा जीनत देखा रखना सही जीनत भाजी तमें प्रोग्राम के हर कल है सही दा भाजी पना जिर में नाल तक पोस्ट ना कहना था हमें भाजी देता हूँ बिल्कुल
1: मजदूर प्रोग्राम का
0: बस बाजी यो जहान मने ना कहो कोशिश मुदावी जी तो से ला दे टेंशन ना बाहर रोज है तुम रडे टेंशन उन्हें दी कहना कोर चारे विसरा विसरा नो रडे टेंशन उन्हें दी पते जिंदगी की ला जी तो से आगे रोड़ी छा सही सही बस भाजी जहाँ मैसेज रोता कड़ा था डोलू ना रोता वाला गवा तो चूंकि भाजी हमेशा कहना भाजी पैसा लावा कभी वही लगावा
1: खबर
0: है वही अल्लाह तो खैर वो किसी खबर बोल रहा है एकदम रसाखे ओके जी ओके जी तोस्ता लगाओ तोस्ता लगाओ टोलो तब लगाओ ओके जी बिल्कुल दाई तो से खबर है सही दाई कहना आर साड़ी तय फल बच्चे दागा डेरा खान वेर कवि ठीक लाई कहना हो तोस्ता खा लगाओ शाह हाँ जी सही था बिल्कुल
1: वक्त अब इंतजार करे इंसान मन तो जिंदगी खुशाबर न बेचारे
0: दाग से खबर है दाग से दा कीमती खबर ही दी
1: बस न जी बचाए ना मतलब पर्ची वो करे तेल श्वास न चगे तब मूर्त लोग तसली और कही ना बचे जिंदगी के दावी
0: हाँ डेरा जबरदस्त खबर है मूर्त लोग डेरा बेहतरीन है खबर है वक्र जी जी जी जी जी
1: शाम
0: सही देर मनना देर शुक्रिया उस दासे बिल्कुल उस डोल वाला गाँव का ना वाला गाँव जहान मनना जागा दाची देखा टको वाल डोल में वाला गवाल शाह वोर वाय

फर्स्ट एस एम एस करे दे रखे फटकवाई छे दे मलक सिंह जी ना जी और दिल की गहराइयों से आपको प्रोग्राम है आने पर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। हमेशा खुश रहो, अच्छा हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए मेरे प्यारे भाई जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रकीब हटकिया जहान मनाना, थैंक यू सो वेरी मच। हेमरू सर अभी ही सर तरसी जीशा लास्ट मिनट रुसरो पोती दे जर जर एस एम एस समय चाहे एस एम एस नशी पोते वही चाहे रकीब हटक पर मलिक सिंह जी चौक ना जेल चौक ना वही जेकर अच्छा खुद को किसी का पसंदीदा फूल मत समझे। ये दुनिया हर रोज नया गुलदस्ता बनाती है। वाह वाह वाह वाह वाह रखी वो डेढ़ संडे रखी मती खबर है। हवाई कहना छे भाई माथा डोल ब्ले का सही अच्छा तब ले करा हूं मैं तो वो उस पाते नहीं जो प्रोग्राम और वगैरह अच्छा था मैसेज पहला रोका लेता सही डोल में तब ले करे दशा भाई सरेंगे ये भाई हलिक नूर भाई अच्छा अच्छा भाई कहना हलिक नूर भाई इच्छता है क्या नाश्ता ना जी भाई हलिक नूर भाई उस चीज आगा मिश्र दाल तक नाश्ता है वही चीज संग रोता वाला गवा उसको टेम रोसर बे ही खत्म शवदा ए बेवफा जनाना दसी बो डेर हेर खड़मा अच्छा मख्त प्रोग्राम के कोशिश कहूँ सही ना वही जी हम हा ये वाला गवा सलाम हलिक नूर भाई था और रेहान भाई था ओके जी हम हा वाला खबर कुछ मैसेज में पहला पड़ा वो कड़ा हुआ खा मखा में बोला गवाला है वाह

जी बिल्कुल नेक्स्ट रखिए फटक मालक सिंह जी ना, तुमने अपना मुकाम मेरे दिल से खुद खत्म किया है, वरना मैं तो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता था। ओ हो सेठ खबर ना रखी वो मजदीगराय दशा हो मजदीगराय दस्तर की मथुर आवाज बड़ा में नहराय दस्तर की मथुर रखी वो सेठ सेठ खबर माँ का वगैरह भी यहाँ जहान मना वही। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी, दिस इज मी वन एंड ओनली यूर फैन क्यूट रुशी खान, वेलकम वेलकम दिल की गहराइयों से हमारे मोहतरम हसूसी कदरदान नाजवल स्वीट भाई जान को। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, थैंक यू सो वेरी मच ख्वाजे खुरजाने। जी जनाब बिल्कुल क्यूट रुशी खानी यो जहान मनला, थैंक यू सो वेरी मच। टीम रुसरा टेक क्रिएट काम द मंडे में खुशी सा डुलुना चिदा गा हो बिल्कुल चिदा के ना तुम रेडी रुशा जगह के ना ची डुलुना ब्याह के लगले सर दा दा खुले खुले दा सवा भाई डॉक्टर साहब तो डलाई डॉक्टर साहब का आवाज और भी कहना दादा तू तो डलाई भी दा खुले खुले।

ओके जी, नेक्स्ट वही छाए रखी भड़े बड़ा मलक सिंह जी। अच्छा, करनी थी बेवफाई तो पहले ही बता देते, दुनिया बड़ी अच्छा बड़ी बड़ी है हसीन। ओके जी, किसी और से दिल लगा लेते। ओ आज वाले की बहुत थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट में क्यूट रुचि, हाँ स्वीट भाई जानी क्या बात है, न्यू VGM न्यू स्टाइल लग रहा है हमारी। अच्छा लग रहा है, गर्मी के साथ आप में भी तब्दीली आई है, क्या खबर है। थैंक यू क्यूट रुचि खान, स्वीट सिस्टर बिल्कुल तब्दील है, चीज़ें जरूरी भी छा। वैसे में क्यूट रुचि खान, स्वीट भाई जानी वारी वारी वारी वारी वारी

फारियो आपके अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चॉकलेट जैसे वॉइस के लिए शो बहुत ही नाइस है। ओए वो वो थैंक यू तुम्हारा तारीफ ना तुम्हारा इज्जत यू जहान मना थैंक यू वेरी मच। ओके जी नेक्स्ट भाई छी मेक यू टू जी खान स्वीट भाई जानी मायूसी शैतान का हथियार है वाजवाज सही खबर है मवकड़ा और उम्मीद ईमान का चिराग है डेर जबरदस्त डेर अक्षल पॉइंट खबर है यो जहान मनना नेक्स्ट मी क्यूटर जहान स्वीट भाई छानी वाह वाह वाह वाह पोदा गाने खोदे नन सामा खादुना वकड़ा आओ कहना चाहिए।

यो जहान मनना नेक्स्ट भाई कना छे आसमा सेफ अस्सलाम वालेकुम राज चाचू हाउ आर यू शो इज नाइस चाचू 22 तारीख को लास्ट पेपर और कल भी है पेपर बिल्कुल पेपर में तवज्जो है ब्याह प्रोग्राम में तो खाली शेष है प्रोग्राम ने एग्जाम चला बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पर और थैंक यू आसमा सेफ मेक यू ड्रीम खान स्वीट भाई जाने मारी अरमान को स्पेशल सलाम और अलीना सिस्टर को 1,01,00,000 सलाम अलीना से कहो कि जब तक मैं जिंदा हूँ हाँ बिल्कुल सलाम की फिक्र न करो छी थैंक यू अलीना एवरे दली बदी विषय आसी दी गिले कवले दी देखो ख्यान न दे आसी गिले कवले दादी गिलो वाला ख्यान दी दी तो वक्स सुमरे रसलमुन दी तलजली दी उस उम्मीद ल रहे छे तो से वो मयूस के रहना शा दा टॉपिक खदाई शा

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

ही खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

अपनी बीबसी अपनी खामोशी मुझे गले गले लगा के रोई, तेरे एहसास तेरी यादें मुझे तसल्ली दे के रोई। अपनी बीबसी अपनी खामोशी मुझे गले लगा के रोई, तेरे एहसास तेरा एहसास तेरी यादें मुझे तसल्ली दे के सोई। जब जालिमों ने मुझे जुदा किया तुमसे, वो शाम आज भी याद है मुझे, वो मेरी आंखों से निकाले आंसू के कतरे डेरा लगा। वो मेरी भी बसी दिल के पुकारे, वो सितमगर वो जालिम वो बर्बाद अपने मेरी, वो इंजाम आज भी याद है, वो इंजाम आज भी याद है मुझे, वो तेरी मीठी आवाज ने तुमसे की मेरी तेरी मीठी बात है। वो बंद हो जाए, वो बंद हो गई हमारे से भी रहते, मुझे ले जाओ तुम खुदा के वास्ते। वो कलाम मेरे आज भी याद है मुझे, हेरला दस्तर को पहाइस दी दिवलाखत करे खुदाया, दस्तर को पहाइस की दिवलाखत करे दे खुदाया, हैरान हैरान वलाड़े माँ नन ब्याह का गत स्वेरे तड़े रला। कलाम जी संगे अच्छा फ्राइडे को नाइट शायद फ्राइडे को नाइट शो होगा आपका इंशाल्लाह। हाँ अनंदा से मैं लिख स्लो स्लो प्रोग्राम का सीधे से बिल्कुल ओके मुझे फाइन है मां। हां कनारे दर तो का मकचे का सूर्य का मकने से वो जिस से सो रहे हैं मुझे हार आया दर पर से घर जंबे कह रहा है यार है मसूर के मां। मैं लिख स्लो प्रोग्राम का आराम आराम से रहा के में खलक पटे लगे के से। नाजमान भाई आपको सलाम, सब भाई को सलाम आयम खिसाम मासूम यदा टांग गुजरबा ना खिसाम बुलाए जुर्माना दर पसे लगे दली दो चीते वो रक्षे हुए साड़िया मुझे वरक लौटा वाले भैया आई लिस्टिंग सडनली यूर वॉइस Sir, I really, really miss you. I am Ruba Malik. Ruba Malik singh hai khore shai. Hey, hello, just me, just my bro. Hal suno. How are you? Welcome to the beautiful show. I am Ruba Malik. Acha, apni chhoti si duniya mein khud mukhtar rakhna dusro ke mehfil mein mukhtaj rakhne se behtar hai. I am Ruba Malik. You are right.